0: Welcome back. Pakistan is on the brink. Many say it's virtually a civil war in Balochistan between Baloch freedom fighters and Pakistani forces. In Khyber Pakhtunkhwa, there's one attack after the other on security forces, with Pashtuns rising for their rights. There's massive trouble in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Gilgit and Baltistan, where elections are being rigged in favor of PMLN, Pakistan Muslim League Nawaz, and the allegation comes from Bilawal Bhutto Zardari of Pakistan People's Party. But there is also this uncivil war between Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif and Pakistan's Interior Minister Mohsen Naqvi. They're both sniping at each other. They both belong to the same party. The Home Minister and the Defense Minister of Pakistan are at war in a month where more than 200 Pakistanis, including 120 Pakistani security forces, were massacred in this civil war. The situation is alarming. Now, Mohsen Naqvi, Interior Minister, he's made a public statement. He says he's going to give details of the biggest scandal, biggest corruption scam in Pakistan that involves judges, higher judiciary, members of parliament, lawmakers and bureaucrats in Pakistan, a scam that's been on for over 20 years. He said the system in Pakistan has collapsed, virtually saying Pakistan has collapsed and a new order is required. Many interpret this as paving the way for Asim Munir, the all-powerful Field Marshal of Pakistan, Chief of Defense Forces of Pakistan, Chief of Army Staff of Pakistan. Now he wants to take over as Sadr-e-Riyasat of Pakistan, which is the President of Pakistan. Khwaja Asif actually shot back. Again, same party, PMLN, Defense Minister of Pakistan. He told the Interior Minister of Pakistan, Mohsen Naqvi, to begin a revolution, start from your own ministry. He questioned, why is he speaking outside the government instead of raising these issues within the cabinet? He also said, if Naqvi truly wants a reform, he should fix his own institution, whether it's the Interior Ministry or Pakistan Cricket Board, where he serves as the chairman. Listen in.
1: देखिए मैंने अपनी जाती राय का इजहार किया है और मैं नॉर्मली ना करता, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने जो अपने फरमूदात जो है जारी किए ना, तो मेरा हक बनता था या मेरा फर्ज बनता था कि मैं रिकॉर्ड जो है स्टेट करूँ। वो कभी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, वो कभी किसी असेंबली के इजलास में कम अज कम मैंने नहीं देखा।
2: दो तीन दफा देखा होगा, किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए।
1: मैंने एक दो दफा देखा उनको या दो तीन दफा देखा होगा।
2: ओके,
1: और जो पार्लियामेंट में जो है 5-6-7 दफा देखा होगा। मैं, हो सकता है मेरा, मैं ना हूँ, तो ज्यादा दफा आए हूँ, 2-4-5 दफा ज्यादा आया हूँ। आप असेंबली का रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरी भी तस्वीर हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाएगा कि असेंबली में कितनी दफा आए हैं और कैबिनेट में कितनी दफा आए हैं। दो तो ये होगी।
0: Imagine a civil war in a country between the defense minister of the country and the home minister of the country, a rather uncivil war. But what should one make of this war? And is it endgame Shahbaz Sharif? Because I want you to listen in to Bilawal Bhutto Zardari, the chief of Pakistan People's Party, saying, tick tock, tick tock, tick tock. Hear the clock. The countdown has begun. Listen in.
3: और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिरे लिखना, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक, टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
0: टिक टॉक, टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू। पाकिस्तान अ जोक। व्हाट शुड वन मेक ऑफ रिपोर्ट्स दैट आसिम मुनीर, द फील्ड मार्शल who's facing fire on multiple fronts from POJK to Balochistan, he wants to split Pakistan from the current four provinces, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh, and of course Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Gilgit, Baltistan. He wants to split them into multiple provinces, at least 12, each into three and then multiple more. Why? Because one, he wants to be Sadr-e-Riyasat. Two, he says he wants better administration. But three, analysts say he wants to break subnationalism, the Pashtun pride, the Baloch pride, the Sindhi pride. He wants to just destroy it. Joining me from Pakistan is Arzu Kazmi. She joins us from Islamabad. Sandeep Unnithan is senior journalist. Arzu, There are reports that multiple containers have been put on the streets of Islamabad. ये जब कंटेनर आते हैं, क्या 111 ब्रिगेड भी अब आने वाली है?
4: गौरव, ये कंटेनर्स तो अक्सर ही इस्लामाबाद में रहते हैं और अब हम इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी भी कह सकते हैं. जैसे ही कोई प्रोटेस्ट या कुछ होने का इनको डर होता है तो ये कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं. साथ ही साथ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे दिखाई देते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज यहाँ पर असेंबली भी है, यहीं पर पार्लियामेंट भी है और साथ ही साथ जो है एम्बेसीज भी हैं, तो इसलिए भी ये कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं. और इस वक्त जो बिलावल भुट्टो का आपने क्लिप दिखाया, तो डेफिनेटली बिलावल को कहीं से इशारा हुआ होगा, उनको किसी ना किसी ने कहा होगा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तभी वो ये बात कर रहे हैं. और यही बात मैं मोहसिन नकवी के लिए भी कहूंगी.
0: टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू, इसका मतलब क्या है?
4: इसका मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शायद बैकपैक हो गया है और उनको हटाया जाएगा या उनकी गवर्नमेंट को हटाया जाएगा. बिलावल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं. मोहसिन नकवी भी जो कह रहे हैं कि जी एक नया सिस्टम लाया जाएगा, तो उनको भी कहीं से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही कहा गया होगा. वरना कुछ दिन पहले तो जो GDISPR साहब जो हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जी पाकिस्तान से हमारे पड़ोसी जल रहे हैं, पाकिस्तान से भारत और अफगानिस्तान जल रहे हैं, ये बात की गई थी ISPR की तरफ से. तो अब अचानक से पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो क्लैप्स कैसे कर गया है, तो यहाँ कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और बिलावल तक ये बात पहुंच रही होगी. शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू है.
0: TikTok, TikTok, उल्टी गिनती शुरू. संदीप, you know, whenever there's action in Pakistan, and we've seen that long history, the 111 brigade or the coup brigade of Pakistan gets very active between Islamabad and Rawalpindi. Interior Minister Mohsin Naqvi actually paving the way for his brother-in-law, Field Marshal Asim Munir, to take over as Sadr-e-Riyasat. Is that what you're picking up?
5: Well, Gaurav, the Field Marshal Munir is the most powerful military leader in the history of Pakistan. He's only the second field marshal. He's the first chief of defense forces. God knows what other titles he's going to accumulate in the next couple of years. Now, the fact is that
0: perhaps
5: the 27th Amendment is what brought him to power, Gaurav, and it literally sealed his dominance over the Pakistani system. And that's why you have the hybrid system. So I don't think that 111 Brigade is needed anymore, Gaurav. They'll be staying in the barracks because Asim Munir's power is cemented through constitutional authority. And now, as you mentioned, the 28th Amendment is possibly one of the biggest tectonic shifts in Pakistan's history. This talk of breaking up the four provinces into 12 provinces to destroy what they think is, Pashtun subnationalism, Baloch subnationalism, all of this. And possibly Munir elevating himself to an executive presidency of the kind that we've seen under General Musharraf. All of this has been tried in the past, Gaurav. You've seen in the 70s, you had the one unit system when they wanted to deny the Bengalis of East Pakistan representation. They came up with this one unit system. And today, they want to go back to breaking up the country into multiple things. It's all distracting, taking away from the fact that there is civil war inside Pakistan. The minorities there, the Baloch and the Pashtuns, are up in arms. This is all a very elaborate charade, a political charade to take attention away from the crisis that Pakistan is currently undergoing, Gaurav.
0: आरजू, क्या असल में बलूचिस्तान को नॉर्थ बलूचिस्तान, सेंट्रल बलूचिस्तान, सदर्न बलूचिस्तान, मतलब हर प्रोविंस को, हर सूबे को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा? ये जो प्लान डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान की मीडिया में या उनके एनालिस्ट द्वारा, खैबर पख्तूनख्वा भी नॉर्थ, सेंट्रल, सदर्न, खैबर पख्तूनख्वा, यही सब पंजाब और सिंध में, ऐसा करने की क्या तैयारी हो रही है?
4: गौरव, बलूचिस्तान को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पंजाब का डेफिनेटली ये प्लान बहुत अरसे से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि पंजाब को डिवाइड किया जाएगा, पंजाब में से और प्रोविंसेस निकाले जाएंगे, क्योंकि अकेले नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है या उनकी पार्टी के कंट्रोल में अगर है तो इनको सूट नहीं करता. लेकिन उसके लिए अभी तक लोग तैयार नहीं हुए हैं, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है. ये काम इनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, ये इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे. लेकिन अगर जो एक सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, अगर आपको याद हो गौरव, तो इमरान खान के वक्त भी यही कहा गया था कि इमरान खान को प्रेसिडेंट बना देंगे और 10 साल तक ये सिस्टम चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो इमरान खान के साथी थे उनको भी शायद यही लगने लगा था कि अब ऐसा ही होगा, और उन्होंने वही उसी तरीके से लोगों से बात करनी शुरू कर दी थी कि अब तो कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वक्त भी अगर ये कोशिश भी करेंगे तो अब ये जनरल मुशर्रफ का जमाना नहीं है, ना ही ये जियाउल हक का जमाना है। तो ये अगर ये सोच कर चलेंगे कि यहाँ पर वही सिस्टम लाएंगे और पब्लिक रखेगी या चल पाएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा।
0: तो अगर आप कह रही हैं, जैसा आपने कहा कि शाहबाज शरीफ का या पीएमएलएन का बोरिया बिस्तरा पैक होना लगभग तय माना जा रहा है पाकिस्तान में, ऐसी हिंट्स आ रही हैं, अगर ऐसा होता है तो कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? मोहसिन नकवी या बिलावल भुट्टो जरदारी, या आसिम मुनीर को अगर सेफ पैसेज देंगे जरदारी साहब को तो बेटे को भी साथ जाना पड़ेगा?
4: देखिए, यहाँ म्यूजिकल चेयर चलती है, पहले इमरान खान, फिर पीएमएलएन, और अब पीपल्स पार्टी की बारी लगता है कि है। और बिलावल साहब जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो मोहसिन नकवी को जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने बेटा बना रखा है, तो अगर वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो फिर कौन से वाले बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, ये एक सवाल है। और यकीनन मोहसिन नकवी इस वक्त बिलावल से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं।
0: मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान में पूरा अनरेस्ट इस समय चल रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आपस में ऐसे यहां पर मतलब टीवी पर ही लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं 21 साल से करप्शन चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया, क्रिकेट में इतना करप्शन है, 200 पाकिस्तानी मर गए हैं जुलाई के महीने में, ऐसी रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं जिसमें 115 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस समय? हर प्रोविंस में एक तरह से ऐसी खबर आ रही है कि आग सी लगी हुई है।
4: बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं फिर भी डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट जरूर उनकी करती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो सच बोल देते हैं, जो कि मोहसिन नकवी ने अभी तक नहीं किया है। चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया पर हो या कहीं भी, वो कोई ना कोई बात कर जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस वक्त गवर्नमेंट जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, चाहे एजाज सैयद हों, चाहे असद तूर या दूसरे लोग, उनको नोटिसेस जा रहे हैं, उनको उनके खिलाफ जो है केसेस बनाए जा रहे हैं कि कौन बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। चाहे इमरान खान का नाम ले लीजिए, चाहे जो कुछ कंट्री में हो रहा है उसके लिए अगर बात करें, तो उन लोगों को अभी तक नोटिसेस जाने शुरू हो चुके हैं, एंड आई डोंट नो के मेरे दरवाजे तक कब आते हैं।
0: आप सुरक्षित रहिए, एंड संदीप, दिस डज पॉइंट टू पाकिस्तान वर्चुअली बीइंग एट ब्रेक पॉइंट।
5: There's every single manner of crisis that Pakistan is going through now. There is an economic crisis. There is an internal security crisis. There is the only area that they don't seem to have a crisis is external, because Asim Munir has bought some time. He's trying to mediate that war between Iran and the United States, though it doesn't
0: except
5: seem to
0: Trump
5: be going
0: did not name
5: well
0: him
5: right
0: just
5: now
0: as the mediator, Trump and that's being seen as a loss of face for Pakistan.
5: I think Trump is losing his patience with Munir as well. He's not delivering the Iranians to him the way that he had promised. So if that also, it flips, then Pakistan is in serious trouble, because externally they need that $10 billion from the United States. If they don't deliver the Iranians as part of the peace deal, they're not going to get any money for this. So literally, Asim Munir has enormous stakes in the game that's going on right
0: and
5: now.
0: And this is where India needs to be very careful, Sandeep, because each time Pakistan is in trouble and it's on the verge of breaking up, to unite Pakistan, they try and attack India, because that's the only way they think that they can stay united when they say they've attacked a kafir Hindu country. This is where India needs to be very, very careful. We'll be tracking that story very closely, and Pakistan should not forget there's been one Operation Sindoor and there can be many more. Arzu and Sandeep, many thanks. We'll be tracking that story closely. That is all I have for you on India First this evening. Many thanks for watching.

0: प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए ईडी सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच
1: ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं। घरेलू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है, शर्म आ रहा है। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठा रहे हैं। माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग
2: Okay, let me turn from there to our ground report today, which is coming from Jharkhand, where the Jharkhand students' protest against examination irregularities in the state has entered day 11. The hunger strike of the students is growing. There are more groups joining in. An assembly gherao has been announced, and the agitation is only getting stronger. But alongside the students' demands, another demand debate is now gathering steam. Is politics deciding who gets support and who gets silence? Will those who opposed Dharmendra Pradhan also question the Jharkhand government? Here's a report.
3: The Jharkhand students' movement isn't slowing down. It's only getting bigger. The protest over alleged recruitment scams has now entered day 11, with Ranchi's Jaipal Singh Munda Stadium fast becoming the state's own Jantar Mantar. Students continue to demand a CBI probe into alleged irregularities in Public Service Commission and Staff Selection Commission recruitments, fresh examinations and action against those behind the alleged paper leaks.
4: CID ho gaya. उस पे विश्वास हो ही नहीं पा रहा, तो सरकार के ऊपर क्या ही विश्वास करके करेंगे। होगा तो ही विश्वास कर पाएंगे, क्या कि विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार तो सीआईडी को जांच करने दे देता है। सीआईडी तो जांच करके देता है, सरकार का तोता है, जो चाहेगा वही करवाएगा। हम लोग को एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज।
5: हमें सीआईडी पे एक्चुअली भरोसा नहीं है।
6: नहीं है,
5: नहीं सीआईडी पे नहीं है, क्योंकि इनकी जो जांच एजेंसी है ये निष्पक्ष तरीके से जांच कर ही नहीं रही है।
6: लोग आ रहे हैं और ये सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे।
3: The government is considering a high level committee, but protesters say they don't trust a CID probe. The agitation is also intensifying. One protest tent continues to be led by student leader Devendra Nath Mahato, who remains on an indefinite hunger strike. A second tent has now begun its own fast, with five more students joining the hunger strike. Food and supplies are pouring in from across Jharkhand as public support for the movement grows. The protesters have now announced the next course of action, an assembly gherao on August 10th during the monsoon session, along with a march on Shibu Soren's first death anniversary. Meanwhile, the BJP has sharpened its attack.
7: पिछले 15-20 दिन से लगातार झारखंड में धूप गर्मी बरसात सबों में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं जा रहा है और सीबीआई की इंक्वायरी करा देने में क्या परेशानी है।
3: Responding to the growing pressure, the government assured that they are working towards a solution.
8: जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है।
3: 11 डेज इन, द टेंस आर मल्टीप्लाइंग, द क्राउड्स आर स्वेलिंग एंड द एजिटेशन इज गैदरिंग पॉलिटिकल हीट। द क्वेश्चन नाउ इजंट वेदर द मूवमेंट इज ग्रोइंग बट हाउ लॉन्ग द गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू वेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग। With Satyajit Kumar, Bureau Report, India Today.
2: More of that interview on indiatoday.com. Let's take a break. When we return, a fascinating story. 20 days after its opening, the Kanpur-Lucknow Expressway is once again seeing a repair. A fifth repair is now triggering an NHAI probe and the removal of three engineers. We'll tell you why on the other side. Get Real India. An expressway under scanner.

0: is a representation of the youth of the country, in which case, welcome to dialogue, discuss, and issue-based addresses of all the questions rather than this sheer selective amnesia.
1: Ms. Shaina NC, coming to Rahul Gandhi, who's been very vocal over the NEET paper leak controversy, he's been speaking for the students and questioning the government over it. Rahul Gandhi is going to have a Chhatro Ki Goonj rally, which is also a student protest in Prayagraj, but has not spoken on the Jharkhand protest so far. How do you see these double standards of the Congress party?
0: Double standards of the Congress have been there forever and ever. Because if you see that Mr. Rahul Gandhi, he raises issues abroad vis-a-vis India's respect. He humiliates our democracy by speaking abroad. So this has been his standard practice. And I'm not shocked that the Congress party continues to hold this kind of a double speak. And the less said about Mr. Rahul Gandhi, the better it is.
1: Right. Ms. Shaina NC, so what will be the strategy of the NDA? Because we've already seen NDA attacking the opposition, questioning the silence, and we've seen how in the past few weeks the opposition was mounting pressure on the government of having a dialogue with the students. So what is now going to be the NDA strategy? All right, we'll try to re-establish that connection with Shiv Sena's Shaina NC, but that is how the NDA is reacting to the silence of the opposition that was very vocal during the NEET paper leak protest, during the protest at Delhi's Jantar Mantar. But talking about Rahul Gandhi, who in fact himself spoke to the NEET victims, who has been holding rallies in several parts of the country over the paper leak. He has been speaking to the students, but he remains completely mum on the Jharkhand protest, despite there being a government of the JMM in alliance with the Congress. There has been no reaction from the Congress party so far. In fact, the Jharkhand government has also not had any dialogue with the students, because that was one of the demands which was being raised by the opposition parties, that the government, the central, must have a dialogue with the students. But when it comes to a state in where the opposition is in power, we don't see that happening. So that is exactly what the NDA is pointing out, and the NDA is hitting out at the Congress and the JMM over this issue. And Rahul Gandhi's big attack on Prime Minister Modi. Rahul Gandhi says, who is Prime Minister Modi to forgive the students? India is going through a strange time. Students ask for fairness in exams. Where does Prime Minister get idea that he has to forgive? Prime Minister Modi forgave abusers, said guide the youth. Woman abused Prime Minister Modi at the Jantar Mantar stir, after which the Prime Minister expressed cultural shock over the abuses directed at him during the protest at Jantar Mantar. In fact, he chose to forgive the children and urged society to guide those who have been misled. He said that the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Now, Prime Minister Modi also assured them that he is working for their future and said that everyone must work together for the country. And now Rahul Gandhi has hit out at Prime Minister Modi, saying that who is Prime Minister Modi to even forgive the students? So Rahul Gandhi has also said that India is going through a very strange time and the students are asking for fairness in exams, not the forgiveness of Prime Minister Modi. Then who is Prime Minister Modi to forgive the students? Remember, Prime Minister Modi had released a video in which he said that he's forgiving the youth who had hurled abuses at the Prime Minister, and he has also said that they must be guided. Let's listen into what Rahul Gandhi said.
2: We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They're asking for fairness in exams. They're asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do.
3: Hi friends, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी।
1: And my colleague Amit Bhardwaj is now joining us on this story. Amit, scathing attack by Leader of Opposition Rahul Gandhi against Prime Minister Modi, saying that the students don't need Prime Minister's forgiveness, but what they need is jobs and also fairness in exams.
4: Yes, Anjali. You know, Rahul Gandhi at a book launch of parliamentarian Vaiko, he was actually speaking on the book, and then he went on to, he chose to attack Prime Minister Modi and RSS as well, where he is saying that the Prime Minister is forgiving the students and the youth of India who are already in on the streets in severe pain. They are seeking fairness in exam. They are seeking a better education system, an education system that works. But Prime Minister chooses to forgive them. And Rahul Gandhi, the leader of opposition, then goes on to say that he does not know us from where the Prime Minister gets this idea that he can forgive the future of India, as well as he speaks as to how, you know, the Prime Minister and his colleagues in the Sangha Parivar have a very caustic idea and dangerous idea that expression of many is not allowed in the country. So this particular comment might also attract severe criticism from those from the Bharatiya Janata Party. But Rahul Gandhi right there again making sure that what happened during the students' protest remains in the public memory, and using that he also attacked the Prime Minister for the video that he had posted some time back, where he had urged everyone to forgive the students who made unparliamentary comments and abusive comments, or certain comments which should not have been made in public domain. Back to you.
1: All right, Amit, thank you for those details and for that context. A scathing attack by Rahul Gandhi against Prime Minister Modi. This is after the abuse, Rao, after the youth hurled abuses at the Prime Minister, after which Prime Minister Modi had released a video saying that he forgives the youth and that no action must be taken against those who had hurled abuses against him and that they need guidance, after which Rahul Gandhi has now attacked the Prime Minister, saying that these are strange times in the country and what the youth needs is not Prime Minister's forgiveness, but jobs, employment and exam fairness. And now shifting focus, India's women athletes played a key role in India's successful Commonwealth Games campaign in Glasgow, winning 8 of the country's 13 gold medals in events like weightlifting, para-athletics, judo and boxing. Champions like Meerabai Chanu, Sharmila Dhankar, Asmita Day and the women boxers including Preeti Pawar, Jasmine Lamboria delivered gold-winning performances. Their success boosted India's medal tally and showcased the growing strength and talent of Indian women athletes on the global stage. My colleague Pooja Shali spoke to some of those champions. Listen in.
5: Five fingers individually mean nothing. Make this a unified fist. That is power. And these five fingers individually may be great players, but they have shown us what Indian power is. So one big applause. Aap paanch ladkiyon ke liye damdar jinhone ye mukka maar maar ke hum sabko jeet dilai hai. Sakshi, main aapse sabse pehle shuru karti hu. Aapke liye isliye easy nahi tha kyunki jab main research kar rahi thi mujhe pata chala aapko kitna manage karna padta hai jab in terms of your own weight aur जब दूसरों से भी कंपटीशन करना पड़ता है. सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे रहता है एक यंग लड़की में जो कहती है बॉक्सिंग भी करनी है, दूसरों को डिफीट भी करना है और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है.
6: जी मैंने 54 केजी खेलती थी. हाँ. तो अभी मैंने कट करके 51 में खेल रही हूँ मैं. तो एक यही स्ट्रगल है कि वेट को मेंटेन करके रखना, भूखे प्यासे, मतलब अगले दिन फाइट होती है तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते उससे पहले वाली जो दिन होता है, फिर पूरी रात प्यासा रहना पड़ता है.
5: जैस्मिन, 40 डेज पहले आई थिंक जो बाउट के आपकी तबीयत बहुत खराब थी, तो क्या आपको एक पॉइंट पे लगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो गया हाथ से?
7: मैम मेरी तबीयत मतलब 20-25 दिन तक ऐसे खराब कंटिन्यू ही चल रही थी.
5: बट क्या हुआ था मतलब कि?
7: स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चल रहा था, डेली फीवर आ रहा है 102-103, टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट लेके ठीक हो जा रहा है, फिर 2-3 घंटे असर है जो टैबलेट का ठीक है, वापस फिर से ऐसे ही आ जा रहा है.
5: लेकिन फिर लास्ट मिनट पे आपने खींच लिया.
7: लास्ट मिनट पे फिर 1 जुलाई से ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे बढ़ाया. पहले थोड़ा वार्म अप फेज में गए 2-3 दिन और फिर हमारा बेलफास्ट कैंप लग गया, वहां पे जाके मैंने अपनी फर्स्ट स्पारिंग की जैसे तैसे, मतलब थोड़ा बहुत कि ठीक है. तो मैं पूरा प्रॉपर फिट तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वही था कि मेरे को भी बोला भी ये गया था कि अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, जो टेक्निकल गेम है जब जरूरत है
5: मेंटल कॉन्फिडेंस भी इस काम आता है.
7: बिल्कुल बिल्कुल मैम.
5: प्रिया, आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया और कब आपको लगा कि अब मुझे भी लेजेंड्स में अपना जो है नाम दर्ज करना है?
8: मैंने 10 साल की एज में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी. तो उस समय मैं बहुत शरारती थी, तो ऐसे होता था कि कोई गेम कर ले, मेरे घर को मुझे गेम्स में डाल दिया. शरारती है
5: तो गेम्स तो बहुत थी, बॉक्सिंग में कहाँ से आ गई?
8: तो लड़ाई तो बॉक्सिंग में होती है.
5: हाँ, उसका जोश था.
8: फिर बाद में ऐसे ही विजेंदर बॉक्सर हैं, उनका नाम सुनने में आया कि वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि हमें विदेश के लिए मेडल लेकर आना.
5: वेल डन. अरुंधति, आप तो कोटा से आ रहे हो, यू शुड हैव बीन डूइंग एन IIT और सम इंजीनियरिंग कोर्स और समथिंग एल्स, या कोचिंग सेंटर में स्क्रू आप लगे हुए होते. व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं मुझे हटना है बाबा मम्मी, मुझे कुछ और करना है, और प्रॉब्लम हुई क्या उसमें?
9: नहीं, सेम था कि स्कूल में जैसे बॉयज को साथ लड़ाई करना, पिट के आना, और फिर प्रिंसिपल का घर पे फोन आना कि वी आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक बिकॉज ये बहुत मस्ती करती है. तो पापा तो चाहते ही थे कि हाँ IIT करूँ, लेकिन फिर मेरा जो नेचर है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते थे. तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है, चूज अ सोलो गेम वे यू कैन परफॉर्म बाय योर सेल्फ. तो फिर उन्होंने गेम बताया 2-3 जिसमें मुझे बॉक्सिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा सिर्फ सुनने में, और उसी की वजह से.
5: ऐसा कैसे हो सकता है लड़की को लग रहा है कि मैं बॉक्सिंग भी कर सकती हूँ, यूजुअली नहीं सोचती है,
9: नेचर ही ऐसा है मैम, मतलब मारने में मजा आता है.
5: गुड गर्ल्स, मतलब वो जो हम लोग को गुड गर्ल्स बोले होते वो ठीक नहीं है कि आप आराम से बैठो. गूंज गर्ल्स, नाइस वर्ड, दिस इज न्यू, गूंज गर्ल्स. प्रीति, ये मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉन्फिडेंस आप पांचों में मैं देख रही हूँ, 2024 में आपकी भी तबियत बहुत खराब हुई थी, कुछ इवेंट्स भी आपने मिस किए थे, तो जब दूसरे प्लेयर्स को आप देखते हो इवेंट्स मिस हो रहे, वो जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, कैसे अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन कहता है कि नहीं मैं बाउंस बैक करूंगी?
10: इट्स डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग रहता है कोई भी फेज, वो इंजरी फेज है या हम बीमार हैं, जस्ट बिफोर कॉम्पिटिशन और इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जाने से पहले अगर हम अपना ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज रहता है. बट आई थिंक मेंटली हमें उस चीज़ को ज़्यादा कवर अप करना चाहिए उस टाइम पे. अगर हम उन चीज़ों को मेंटली ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कवर अप कर लेते हैं फिजिकली एट द एंड.
5: थैंक यू वेरी मच गोल्डन गर्ल्स, एंड दे हैव शोन अस गर्ल्स कैन डू एनीथिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.

0: Talking about protests, we're getting you all the details from the state of Jharkhand, where in Ranchi, students have been protesting. Student leader Devendranath Mahato has broken his water fast, ended his water fast during a video call with an activist, Sonam Bangchuk, who assured him that he would visit the protest site. Mahato, however, said that his hunger strike against the alleged Jharkhand Public Service Commission exam leak will continue. CJP founder Abhijit Dibke also announcing that he will join the students' tour in Jharkhand, adding that CJP supports every student movement and calling Bangchuk a mentor. Politics over the issue continues, with Shiv Sena coming down heavily on Rahul Gandhi over the Jharkhand students' tour. Now, Shiv Sena Sanjay Nirupam has questioned Congress leader Rahul Gandhi, asking why he's holding the Chhatro Ki Gunj program in Prayagraj instead of Ranchi, where students have been protesting. Nirupam asked why Gandhi, who has been vocal on the neat paper leak issue, was silent on the Jharkhand students' agitation and said that the Congress party's selective outreach is laughable. Meanwhile, the BJP has claimed that four protesting students, two boys, two girls, have begun a fast unto death after the demands went unheard. The party said ignoring students' voices and forcing them to take such an extreme step is deeply regrettable.
1: कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं देंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
2: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार का अपना निर्णय लेगी।
3: सोनम बांगचुक सर का वीडियो कॉल में बात हुई। सोनम बांगचुक सर, हम लोग का आंदोलन को समर्थन करते हुए मनोबल बढ़ाए हैं। उन्होंने बहुत ही आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि जल और नमक आप लीजिए और आपके साथ हम लोग हमेशा सब कोई है और निश्चित तौर पर आप लोग का आंदोलन सफल होगा। हम सोना मानचुक पहले बहुत कोई ऐसे रिक्वेस्ट किए थे जल और नमक लेने का, तो हमने सबको मना किया था, लेकिन सोनम सर को एक शर्त के साथ हमने जल स्वीकार किया है।
4: जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हम आंदोलन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, चाहे बारिश है चाहे धूप है, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारा मांगों को पूरा किया जाए, जेपीएससी में रिफॉर्म लाया जाए, जेएसएससी में रिफॉर्म लाया जाए, एग्जाम्स को रद्द किया जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमें।
5: लोगों के लिए अलग अलग कार्य प्रणाली बनाते हैं, प्रशासन के लिए कार्य प्रणाली बनाते हैं, वो भ्रष्ट ऑफिसर्स, वो भ्रष्ट नेता जो लोगों, जो अमीर जादों से पैसे लेकर नौकरियां बांटते हैं, लड़ाई हमारी उनसे है।
6: हम लोग युवाओं को दर्द है वो समझ नहीं रहे हैं। हम लोग सालों साल से जो है एग्जाम को लेकर तरस रहे हैं, है ना। हम लोग जो है निराशा से हम लोग छाए हुए हैं, तब आज हम लोग रोड पे आज उतरना पड़ा है।
7: लगातार झारखंड धूप गर्मी बरसात सबों में हमारे बच्चे पड़े हुए, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं जा रहा है। दूसरा जो सवाल है कि यदि जेपीएससी के चेयरमैन के ऊपर आपने रेड डाला, उसका इस्तीफा हो, तो जो उसके मेंबर्स हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं, उनकी पत्नी भी उसकी मेंबर, इन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और सीबीआई की इंक्वायरी करा देने में क्या परेशानी है? इसीलिए नहीं कराना चाहते हैं कि पिछले 7 साल जो भी लोग बने हैं उसमें कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के रिश्तेदार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के रिश्तेदार हैं, तो सारी चीजें जो है खुलकर आ जाएंगे।
8: जिन जो सांसद जीत कर गए हैं वहां पार्लियामेंट में, और भी तो भाजपा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है तो उत्तर प्रदेश के सांसद लोग क्यों नहीं धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट के पास? बिहार के सांसद लोग क्यों नहीं दे रहे हैं पार्लियामेंट के में धरना? बेवजह यहाँ नाटक किया जा रहा है, झारखंड की छवि को खराब की जा रही है, युवाओं को इस तरह से दिखाया जा रहा है गलत गलत वीडियो कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कुछ नहीं यहाँ।
0: Listening to what Abhijit Dibke had actually said, this of course in context of the kind of protest that's happening in Jharkhand.
9: Definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था, पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम।
0: Going straight across to my colleague Satyajit, getting in more on that story. He's been tracking these protests which are unrelenting. Tell us what next, given that Mahato has now broken his fast. Support there from Sonam Bagchuk and CGP head, is also forthcoming. But really, what is the way forward? And after the assurances also that have come in from the Jharkhand government here.
10: Sneha, he was abstaining from water also. Now he has started to consume water after speaking to Sonam Wangchuk, after the assurance that he is going to support the movement, after his assurance that he is going to come and boost the movement. Mahato has agreed to end up his water fast and they are feeling motivated. They say that now they are going to agitate for a long time till their demands are met, till the governments wake up. Wangchuk said that your aim is not to suicide but to wake up the government. So that is the point. You should start having water and little bit of salt. And this is what Mahatma Gandhi also did during the freedom movement. He used to have lemon also. Sahed, lemon and little bit of salt is needed if you want to sustain for a long time. Otherwise, you'll be picked up and you'll be admitted to the hospital and the movement will move in a wayward direction. So,
0: Satyajit, coming back to you. In fact, we're shifting focus quickly to some news which is just coming in at this point in time. Let's take a look at these developments. Breaking at this hour has got to do with what the Prime Minister said, advising the MPs to be vigilant against the misuse of their letterheads and to avoid being rude to people during telephonic conversations. The Prime Minister interestingly urging the MPs to learn from their fellow parliamentarians, even those belonging to the opposition. He said, living in the present is essential for achieving good results. I'm getting in Ashwari. Ashwari, give us the download of what exactly has been said by the Prime Minister in this meeting. What really happened here?
11: Has spoken about the fact that one has to be very careful when they deal with the public, and at times one's anger does get the better of him or her. That is something that should not happen. And Mr. Modi has also said that, you should also, because India is a true democracy, look at the behavior of some of the opposition MPs, some of them who in fact are role models. So those are things that should very clearly be looked at. Prime Minister Modi has also said that you are here to work for the people. Always remember that and always make sure that you keep the people at the forefront. People first, that's the message that Prime Minister Modi has given to everyone who the Prime Minister met today.
0: I'm going to thank you for the moment getting in those details and telling us about what the Prime Minister said in the NDA MP's huddle is my colleague Ashwarya Palawan. With that, it's a wrap on this edition. News continues with me right here on the other side of this very quick commercial break.

0: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है।
1: पार्लियामेंट मॉनसून सेशन रिमेन्स पैरालाइज्ड विद ऑपोजिशन टर्निंग द हाउस इनटू बैटल ग्राउंड ओवर टू फ्लैश पॉइंट्स।

0: No explosions, no larger than life heroes, just emotions that feel deeply personal. And that's exactly why Musafir Cafe has become social media's latest obsession. Here's why this tender love story is striking a chord with audiences everywhere.
1: Look, I meet every musafir for some reason. Some for a little while, some for a life.
2: Some stories don't end when the credits roll. They quietly move into your heart.
3: वो वाली एनर्जी है।
4: वो एनर्जी मतलब?
3: जैसे कोई वर्जिन लड़का पहली बार किसी लड़की को घर लाया।
2: That's exactly what Musafir Cafe has done.
4: वो लॉयर हैं।
3: जी।
5: Objection, Milord?
3: Milord नहीं होता।
5: Sustained.
2: It isn't breaking the internet with shocking twists or larger than life moments.
3: मरने को कम जीते हो क्या?
6: थोड़ा पास आइए ना मैडम।
3: तुम जैसे लोग थोड़ी देर से मिलते हैं
4: और तुम जैसे ज्यादा देर रुकते नहीं।
2: Instead, it's making people pause, revisit old memories.
7: मोहब्बत का अजीब ही तरीका होता है, वो फिर से लौट आती है, किसी नए रूप में, किसी नई मुस्कुराहट के साथ।
2: Text the one person they could not forget and wonder what if.
8: दो लोगों को अलग अलग लाइफ स्टेजेस में प्यार नहीं कर सकते।
2: In an age of endless scrolling and instant gratification, this tender, slow-burn romance has now become social media's newest emotional obsession.

0: सर आप मार्च लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, हैवी पुलिस बैरिकेडिंग है इस वक्त आपको रोकने के लिए, पिटीशन में क्या था, क्या कहना चाह रहे हैं?
1: देखिए अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका इथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन वो इथेनॉल पूरा इस्तेमाल नहीं कर सक पाता, उनके लिए वो कूड़ा है। तो ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है और अमेरिका के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद के हमारे ऊपर E20 थोप रहे हैं। जनता E20 से परेशान है। एक तरफ जिस तरह से मोदी जी अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, पूरी दुनिया के सामने भारत का अपमान हो रहा है, और दूसरी तरफ हम E20 से परेशान हैं। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि आप अमेरिका के दबाव में मत आइए और हमें E20 से मुक्ति दिलाइए।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: You are watching India Today.
4: Eight out of 13 gold medals at the Commonwealth Games Glasgow 2026 were won by women. And out of them, five in boxing, most of them from Haryana. I met these boxing golden girls and the kind of hardship they have overcome to be able to get this victory, glory and honour for India. I also, during the conversation,

0: learned a few punching tricks from these very brave and incredible girls. Here to the Sheroes of India. Five fingers individually mean nothing. Make this a unified fist, that is power. And these five fingers individually may be great players, but they have shown us what Indian power is. So one big applause. Aap paanch ladkiyon ke liye damdar jinhone ye mukka maar maar ke hum sabko jeet dilai hai. Sakshi, Jasmine, Priya, Arundhati, Preeti, each one of them have lived with struggle, hardship, hard work, but a determination. Five gold medals for India in CWG 2026 in Glasgow in boxing. Not easy. We've often heard it from men getting us boxing medals. Five young women. Sakshi, main aapse sabse pehle shuru karti hu. Aapke liye isliye easy nahi tha kyunki jab main research kar rahi thi mujhe pata chala aapko kitna manage karna padta hai jab in terms of your own weight aur जब दूसरों से भी कंपटीशन करना पड़ता है. सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे रहता है एक यंग लड़की में जो कहती है बॉक्सिंग भी करनी है, दूसरों को डिफीट भी करना है और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है.
1: जी मैं 54 केजी खेलती थी. हाँ. तो अभी मैंने कट करके 51 में खेल रही हूँ मैं. तो एक यही स्ट्रगल है कि वेट को मेंटेन करके रखना, भूखे प्यासे, मतलब अगले दिन फाइट होती है तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते उससे पहले वाली जो दिन होता है. फिर पूरी रात प्यासा रहना पड़ता है और फिर मॉर्निंग में बाउट हम खेलते हैं और उसके बाद फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्रेशर था, एक जो हम खेलने जाते हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अलग होता है.
0: और आपने एग्जिस्टिंग चैंपियंस को डिफीट किया.
1: हाँ जी. तो मतलब जो फर्स्ट वाली बाउट थी तो उसमें तो मुझे बहुत ही ऐसे फील हुआ कि ओ माय गॉड कि मतलब कितना क्राउड है, इतना प्रेशर है. लेकिन फिर बाउट वाइज बाउट अच्छा होता गया और फिर मेरे ऊपर ये भी प्रेशर था कि मुझे गोल्ड मेडल ही जीतना है क्योंकि मैंने ट्रायल्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया था. फिर अपनी उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना था
0: और वो वेट भी, परफॉर्मेंस भी. और आपने डोमेस्टिकली भी पहले जीता, वो भी स्टेप नहीं था.
1: ट्रायल्स में अच्छा किया था तो ये प्रेशर था कि वहां भी गोल्ड ही जीतना है
0: क्योंकि अगर वहां नहीं आता फिर.
1: हाँ, फिर सभी बोलते कि यहाँ मार के क्या ही फायदा हुआ,
0: हमारे पुराने भी चैंपियंस चले गए. जैस्मिन का बहुत इंटरेस्टिंग है. जैस्मिन 40 डेज पहले आई थिंक जो बाउट के आपकी तबीयत बहुत खराब थी, तो क्या आपको एक पॉइंट पे लगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो गया हाथ से?
2: मैम मेरी तबीयत मतलब 20-25 दिन तक ऐसे खराब कंटिन्यू ही चल रही थी.
0: बट क्या हुआ था मतलब कि?
2: स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चल रहा था. डेली फीवर आ रहा है 102-103, टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट लेके ठीक हो जा रहा है. फिर 2-3 घंटे असर है जो टैबलेट का, ठीक है, वापस फिर से ऐसे ही आ जा रहा है. तो 1 वीक तो हमने उसी में निकाल दिया कि चलो ठीक है ठीक है. फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है. फिर मतलब हम ये कोशिश कर रहे थे सभी डॉक्टर्स की हो क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली है क्या,
0: कैसे टीम ने
2: हमने मतलब इसी में 20-25 दिन ऐसे ही निकल गए ऐसे. फिर हमने हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया अच्छे से और फिर वहाँ पे एक टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो हाई लेवल पे था तो उस वजह से वो इतना फीवर.
0: तो कैसे आपने अपने आप को बोला कि मैं मिस तो नहीं होने दूंगी इवेंट?
2: मैम उस टाइम पे तो थॉट्स यही चल रहे थे कि पता नहीं क्या ही होगा, मतलब बिल्कुल कितने दिन बचे हुए थे, 22 मतलब इतना ही 20-25 दिन ही बचे हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने में और मैं ऐसे पीछे, मैं मतलब एक मंथ तक मैंने ट्रेनिंग भी नहीं की है, मैं ऐसी बीमारी चलती आ रही हूँ लगातार कंटिन्यू. और फिर वो एंटीबायोटिक्स भी मेरी 14 डेज तक चली थी
0: लेकिन फिर लास्ट मिनट पे आपने खींच लिया.
2: लास्ट मिनट पे फिर 1 जुलाई से ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ाया. पहले थोड़ा वार्म अप फेज में गए 2-3 दिन और फिर हमारा बेलफास्ट कैंप लग गया, वहां पे जाके मैंने अपनी फर्स्ट स्पारिंग की जैसे तैसे, मतलब थोड़ा बहुत कि ठीक है. तो मैं पूरा प्रॉपर फिट तो नहीं थी यहाँ पे लेकिन वही था कि मेरे को भी बोला भी ये गया था कि अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, जो टेक्निकल गेम है जब जरूरत है
0: मेंटल कॉन्फिडेंस भी काम आता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल मैम. और उसकी मतलब ट्रेनिंग हमारी जो मेंटल का था वो प्रिया वृंदा मैम है तो उनके साथ काम करके.
0: देखिए मेंटल कॉन्फिडेंस अपार्ट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ यू कैन पुल ऑफ इवन इफ यू आर सुपर अनवेल. प्रिया आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया और कब आपको लगा कि अब मुझे भी लेजेंड्स में अपना जो है नाम दर्ज करना है?
3: मैंने 10 साल की एज में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी तो उस समय मैं बहुत शरारती थी तो ऐसे होता था कि कोई गेम कर ले, मेरे घर को ने मुझे गेम्स में डाल दिया. शरारती है
0: तो गेम्स गेम तो थी, बॉक्सिंग में कहाँ से आ गई?
3: तो लड़ाई तो बॉक्सिंग में होती है.
0: हाँ, उसका जोश था
3: उसका जोश था. फिर बाद में ऐसे ही विजेंदर बॉक्सर हैं उनका नाम सुनने में आया कि वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए तो उसके बाद ऐसे हुआ कि हमें विदेश के लिए मेडल लेकर आना.
0: वेल डन. अरुंधति आप तो कोटा से आ रहे हो, यू शुड हैव बीन डूइंग एन आईआईटी और सम इंजीनियरिंग कोर्स और समथिंग एल्स, या कोचिंग सेंटर में स्क्रू आप लगे हुए होते. व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं मुझे हटना है बाबा मम्मी, मुझे कुछ और करना है, और प्रॉब्लम हुई क्या उसमें?
4: नहीं, सेम था कि स्कूल में जैसे बॉयज को साथ लड़ाई करना, पिट के आना, और फिर प्रिंसिपल का घर पे फोन आना कि वी आर सस्पेंडेड फॉर वन वीक बिकॉज ये बहुत मस्ती करती है. तो पापा तो चाहते ही थे कि हाँ आईआईटी करूँ, लेकिन फिर मेरा जो नेचर है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते थे. तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है, चूज अ सोलो गेम वेयर यू कैन परफॉर्म बाय योरसेल्फ. तो फिर उन्होंने गेम बताया दो तीन जिसमें मुझे बॉक्सिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा सिर्फ सुनने में, और उसी की वजह से.
0: ऐसा कैसे हो सकता है लड़की को लग रहा है कि मैं बॉक्सिंग भी कर सकती हूँ, यूजुअली नहीं सोचती है,
4: नेचर ही ऐसा है मैम, मतलब मारने में मजा आता है.
0: गुड गुड गर्ल्स, मतलब वो जो हम लोग को गुड गर्ल्स बोले होते वो ठीक नहीं है कि आप आराम से बैठो. गूंज गर्ल्स, नाइस वर्ड, दिस इज न्यू, गूंज गर्ल्स. प्रीति, ये मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉन्फिडेंस आप पांचों में मैं देख रही हूँ, 2024 में आपकी भी तबियत बहुत खराब हुई थी, कुछ इवेंट्स भी आपने मिस किए थे, तो जब दूसरे प्लेयर्स को आप देखते हो वो इवेंट्स मिस हो, वो जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, कैसे अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन कहता है कि नहीं मैं बाउंस बैक करूंगी?
5: इट्स डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग रहता है कोई भी फेज, वो इंजरी फेज है या हम बीमार हैं जस्ट बिफोर कॉम्पिटिशन, और इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जाने से पहले अगर हम अपना ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज रहता है. बट आई थिंक मेंटली हमें उस चीज़ को ज़्यादा कवर अप करना चाहिए उस टाइम पे. अगर हम उन चीज़ों को मेंटली ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कवर अप कर लेते हैं फिजिकली एट द एंड. और ओलंपिक में भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं थोड़ा बीमार थी बट मेंटली मैं अपना पूरा ट्रेनिंग कर रही थी.
0: Big, big news coming in. Mark Zuckerberg of Meta has put out an apology, apologizing for a certain content that's been available on social media platforms that raised a lot of objection. Sent his apology for the CSAM content, the deep fake content and errors in operating the platform. It was made clear to them that they're not covered under intermediary definition and they select who receives the content. Safe harbor under IT Act is not applicable. They admitted that a lot of money was being paid for boosting certain type of content, and that has led to an issue about what precisely is here being seen. Remember, especially with regard to children and child sexual abuse material, that CSAM, that was being seen on Meta, on what's been earlier Facebook, and that has raised a lot of concern. I want to immediately bring in India Today's Maria Shakil. Maria, this is a first to have an apology. Why do you think this has come? What does it signify?
6: Yes, so I think the government has been pretty firm with regards to the content which is perhaps there on Facebook and Meta platform, which is particularly of massive concern with regards to, you know, deepfakes and also of child sexual abuse. For Mark Zuckerberg to apologize for those content and also saying that there are certain technical glitches which have been involved in it. Remember, there was a Meta global head and the team which earlier had a meeting with Meta officials. The message which has gone from them is clear that there will be action, that there will be no protection granted to them if these content continue to be there on the platform.
0: So what do you think can be done now? There cannot always be an outrage. I think there's something Meta needs to do it by itself also and watch and be careful, because we're not just talking about pornography content. We're talking about children here.
6: Yes, absolutely. I think a great degree of sensitivity is what we have been saying. But I would say that this isn't just about India. We have seen this happen in multiple countries.
0: Correct.
6: Where Meta has been forced to take down those contents. But because the server of the big techs are not in India, the government of India has often faced that challenge as to how soon will those content be taken off the platform. Now that Mark Zuckerberg and Meta have gone ahead and issued an apology, there is certainly this sense that there will be a great degree of caution in future, and that the platform and such examples will be set for other big tech companies as well, that their platform is not misused by those who should be careful, because the kind of access and the sheer spread in a country as vast as ours, which is 1.4 billion population.
0: I just want to be clear here, Maria, that the government has confirmed that Mark Zuckerberg has apologized or Zuckerberg has put out a statement. What are you hearing?
6: Yes, so far it is coming from the government side, but of course we can expect a similar statement to come from Meta anytime, maybe not, maybe in a couple of hours or so. But the sense that is being given here right now is that the government has decided that when it is about big tech companies, and given the kind of market that India offers to them, they have to be held responsible for what is published on their platforms.
0: What do you think here now should be the next step for the social media? Do you think, because government coming in every time is also not seen as a safe bet. It's not where the government should always intervene, always raise an objection if this is connected here.
6: You know, so responsible content is what the government has been pushing for. But the sense certainly is that these companies, again, as I said, their servers are not in India. And who do they communicate with? That is the sense that often comes, that if a complaint is registered with Meta, by not just the government, but anyone, by general public or public at large in India, citizens of India, if they are seeing something which is deeply objectionable, how do they raise that with the platform and how soon will it be taken down has been a matter of concern. The government on its part has been very clear that it has to be taken down in a matter of hours, that these content cannot be allowed. And if there is often that, you know, reason cited by these deep tech, big tech companies is that these deepfakes and their taking down takes time. Then how much time?
0: But that's an important point, what Maria is saying, that you shouldn't wait for the government. Thank you, Maria, for that. That the government has to come in. If a general public believe that there is something very inappropriate at this time, you're talking about children's sexual abuse content, it immediately must be flagged and taken up by Meta. We'll be tracking that. That's a big story. And stay tuned. Thank you very much for watching, India.
7: Are watching India Today.

अलग अलग सूचना माध्यमों से देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है।

अलग अलग सूचना माध्यमों से देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है।

0: watching To The Point on Preeti Chaudhary. We come to you today from the Jaipal Singh Munda Stadium. Ranchi Jharkhand is having its Jantar Mantar moment. I'll ask my camera person to quickly pan about and show you where we are right now. A bit of Gen Z right there. Posters, placards that will take you back to what you possibly witnessed during the times of Jantar Mantar. A kitchen already there feeding the people who've been coming in a steady stream. There are two stages here. We'll tell you a little more about it. A lot of tricolor right before 15th August. You can see the Indian flag as well. Most students have come with the Indian flag in their hand. We're going to continue to get you, my colleague Pawan and I, but first up, before we get you all the ground reports, the latest coming in from Jharkhand, allow me to take you through the headlines. Meta head Mark Zuckerberg apologizes over child sexual abuse and cheap fake content, but no mention of Prime Minister's video removal. Meta official to be once again grilled by IT Ministry tomorrow. U.S. lawmakers slam proposed FCRA changes. Big strike on India's foreign donation law tweet. Republican Riley Moore flags concern. U.S. lawmaker raises Indian religious freedom issue. Links FCRA to India-U.S. ties. The Jharkhand government officials hold talk with students at protesting site. Chief Minister Hemant Soren assures concrete solution over irregularities in exams. Activist Sonam Wangchuk to meet protesting students. Udayanidhi Stalin's blistering attack on Vijay responds to India Today's question on arrest drama and TN budget. Calls budget an absolute zero, says Vijay silent on his arrest drama. Multiple protests against Punjab government exam fraud, pharmacy cheating and DA protests. BJP, Congress and government employees take on Maan government. After days of protest, developments finally at the Jaipal Singh Munda Stadium, where students have been protesting against what has been massive alleged irregularities in the paper and examination system, especially where it comes down to the JPSS and the JSSC. So the latest that is, about 3 hours ago, you had the government officials from Hemant Soren's government come in, speak to the protesting students right here. They've asked them to come up with a five-member delegation so talks can begin. The students, though, have stuck to their demands. Sources tell us that the government is willing to bend to nearly all their demands but one, which is a CBI inquiry. The students are adamant that no, not CID, but a CBI inquiry takes place in all these irregularities of examinations that have taken place, where the JPCC is concerned and the JSCC is concerned. In midst of all of this, the news that we are just breaking, you had the Chief Minister, Hemant Soren of Jharkhand, who has met the governor a short while back, assuring him that the government is opening channels with the students who are protesting and is trying to do what the government can to meet the demands of the students. Word coming in that the Jharkhand Chief Minister, Hemant Soren, has met Governor Santosh Gangwar at Lok Bhavan and briefed him on the alleged irregularities. The governor, on his account, has stressed on the necessity of exam process to be made transparent and fair. to uphold trust of the youth and call these allegations, alleged irregularities, a very serious matter. The Hemant Soren government says that they will try and meet the students' demand, but our sources tell us that the government not keen to hand over the paper leak issue, the irregularities issue to the CBI. Will the government budge on that? Because that seems to be the main sticking point. I want to connect to my colleague Satyajit, who has been tracking all the developments in the JPSC irregularities as well as the JSSC irregularities in Jharkhand that these students have been protesting. Satyajit, what is the latest? The Chief Minister has met the Governor, but what is really going on inside the government circles? It seems that now top leaders of Hemant Soren's cabinet also expected to come in and meet the protesting students.
1: Of course, the government seems very serious to resolve this issue, to address this issue, and that is why the other day he had made a statement that he is doing all the things that is needed to address the issue, and raids were conducted the moment this issue was raked up by the students that there was a large-scale rigging in the prelims exam of 14 JPSC. Raids were conducted. The JPSC erstwhile chairman was made to tender his resignation. He is being quizzed by CID regularly. He was called by the CID for 4 times consecutively on different days. And after that, many raids were conducted. 14 arrests were made. And now, the government seems really serious to break this deadlock. They had made an attempt to break the ice. Today, Ranchi's SDO and ADM Law and Order had come here to meet the students, and they have asked them to form a delegation of 5 members, and then perhaps the government has the plan to listen to the students, to the protesters, that what is their demand and what are the demands that could be conceded. But they have made it apt clear that they want a CBI probe into the bungling in all the exams conducted by JPSC and JSSC in the recent past treaty. So that's why that could become a contention, but many demands could be met also. That is what we are gathering, like the demand that they want the cancellation of 14th JPSC prelims. This could be done, and they want a total reforms in JPSC and JSSC. The government can discuss these points. So this protest is going on since the last 12 days, and students are adamant till their demands are met, till their demands are conceded, they are not going to budge, they are not going to refuse. And the joys out here in the tents are really high. There are 2 centers where the protests are going on. One is being led by Devender Mahato, JLKM leader, and he had contested elections also, assembly polls, on a JLKM ticket from Silli. And other center is the concentration of students. So they have been on, a few students have been on hunger strike from that faction also. And Devender Mahato, for him, this is the 4th day he is on indefinite fast. Today, Sonam Wangchuk spoke to him over video call, and he asked him to have some water and a bit of salt with lemon, sahad, etc., so that he can sustain for a long time. The purpose is not a suicide, okay, but to wake up the government from its deep sleep. So he has considered the point during the video call itself. He consumed some water, and he has ended up his water fast. Preeti.
0: All right. Okay, Satyajit, thank you for joining us with the very latest, ultimately, viewers, to give you perspective. It seems that the government, Hemant Soren government, is willing to accept all demands other than the CBI demand. The students here are very keen and adamant that it will only be all demands and nothing else. So now they are going to come up with a 5-member committee. But I will take you through. On the day that my colleague Pawan, our video journalist, and I spent here, It's a lot more what you see at the Jaipal Singh Munda Stadium than just protest against the Jharkhand Public Service Commission exams or the Jharkhand Staff Service Commission exams and the irregularities in that. The angst of the youth that you saw in Jantar Mantar, where unemployment is concerned, is massive. Where paper leaks in other examinations is concerned is massive. While JPSC and JSSC has become the rallying point, the bigger issue, like Jantar Mantar, is the rage of the youth, and it's culminating in this stadium today. And that is what my colleague Pawan and I found out. This is our report.
2: Even as the protest enters day 12, there is no sign of the agitation losing steam. Thousands of students and job aspirants continue to camp in Ranchi, vowing not to back down until the government addresses what they call years of irregularities in Jharkhand's recruitment system. The trigger, the 14th JPSC Civil Services exam.
0: What you can see right here in Ranchi is Jharkhand is having its Jantar Mantar moment. The angst, the rage of the youth, some of them in midlife now, because they've given their entire youth trying to make their future their life. And that has come to a knock. Therefore, sitting here, squatting here in the rain, demanding that the Chief Minister hand them over what is left, the remnants that is left of a future that they can still exercise.
3: So, kahan se aaye hain, sir?
4: Ye Bokaro Chas.
3: Bokaro se aaye hain yahan par. Kyun pahunche hain yahan?
4: Ma'am, actually, matter to mera JPSC ka bhi hai, JSSC ka bhi hai. Lekin hamara jo personal abhi matter hai, wo Aansu Lipi stenographer ko related hai. Stenographer ka jo वैकेंसी 2022 में आया था वो अभी 2026 हो गया, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ और एग्जाम को रद्द कर दिया गया है वापस. एलडीसी का एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया. मैम, जिसमें सेटिंग नहीं हो पाती है ना,
0: सर्विस कमीशन,
4: यस मैम,
0: जेएसएससी की बात कर रहे हैं, झारखंड स्टाफ कमीशन.
5: ये जो आंसू लिपिक है जिसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, ये 2022 में आता है, 23 में परीक्षा ली जाती है, फिर इसको रद्द कर दिया जाता है, फिर 25 में आता है, फिर 26 में इसको रद्द कर दिया जाता है. जब आयोग से हम लोग पूछते हैं कि आखिर रद्द क्यों हो रहा है, तो आयोग कहता है कि आप किसी और चीज का तैयारी कर लीजिए. ये मैं बताना चाहूंगा, एक स्टेनोग्राफर तब बनता है जब 5-6 साल तैयारी करता है, जब वो शॉर्ट हैंड लिखता है. शॉर्ट हैंड एक स्किल है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद भी एक हिंदी टाइपिंग, ये वो भी स्किल है. तो हम आयोग,
0: आप जेएसएससी का एग्जाम दिए,
5: जी जी जी, तो हम आयोग को बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह का बहाली लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, फिर लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, तो स्टूडेंट से आप एग्जामिनेशन ही वसूलने के लिए आ रहे हैं और विज्ञापन अगर निकाल रहे तो आप नशा में निकाल रहे हैं.
6: सबसे बड़ी बात यह है ना कि इससे पिछले वाली जो सरकार थी उसने 6-7 बहाली था, जैसे स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल, सारा एग्जाम को जब ये माननीय मुख्यमंत्री जीत करके आए थे तो सारा एग्जाम को जो है कैंसिल कर दिया था. एग्जाम दिया हुआ था हम लोग का, दोबारा कैंसिल कर दिया था. सीजीएल में तो कहीं इतना भ्रष्टाचार है, उनको कोई
0: काम. कहां से आए हैं आप?
6: हम तो पलामू से हैं. पलामू
0: इतना दूर यहाँ आए हैं?
6: हाँ.
0: इसी चीज के लिए
6: स्टूडेंट है ना?
0: आप स्टूडेंट हैं और इसी चीज के लिए?
6: हाँ, इसी चीज के लिए आए हुए हैं.
0: और डटे रहेंगे?
6: हाँ.
0: अगर सरकार कहती है कि देखिए हम बाकी मांगे मान लेते हैं पर सीबीआई की नहीं सीआईडी की जांच होने
6: चाहिए. मैम,
0: सीबीआई ही चाहिए,
6: सीबीआई चाहिए. चूंकि कारण क्या है कि सीआईडी का दुहाई दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी. सीआईडी मानी है कि सीजीएल पेपर जो लीक हुआ था उसमें 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन का आंसर मिला था, लेकिन उस टीम को बदल दिया जाता है मैडम. उसके बाद नया टीम में जो है सो आता है, वो जो है सो लिपापोती करता है और हाईकोर्ट में सबमिट कर देता है कि नहीं फ्यू क्वेश्चन जो है सो लीक हुआ है, जिसके वजह से हम लोग के पक्ष में न्याय नहीं हो पाया है मैडम. इसलिए हम लोग को सीआईडी पर भरोसा नहीं है.
0: इसीलिए सीआईडी पे भरोसा नहीं है,
6: सीबीआई चाहिए हम लोग.
0: जो यहाँ पर बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि 19 से सारे एग्जाम रद्द करिए, पर 19 से सारा एग्जाम रद्द करना कैसे होगा? लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया.
6: मैम, हम लोग एफआरओ का भी दिए हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, उसका भी पेपर लीक हुआ है, उसमें भी मतलब धांधली है.
7: लिखवाया जा रहा है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मेन्स की कॉपियां हैं, एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में, होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई. तो ऐसा कहां रूल है? मेन्स की कॉपियां जब भी स्टूडेंट मेन्स लिखते हैं उसको मेन्स लिखने के बाद कॉपियां जो है वो स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, आयोग की जेपीएससी के स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है. बट एफआरओ मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपियां जो है, जो मेंस की एग्जाम में लिखी गई थी, एक प्राइवेट एजेंसी के निजी कंप्यूटर लैपटॉप पे भी कॉपियां पाई गई। तो कैसे हुआ है ये सिस्टम में ऐसा लूप होल है कि ऐसा सुनने में आता है, लोग एक बच्चा बच्चा बोलेगा कि यहाँ की मेंस जो है स्टूडेंट तो हॉल में लिखते हैं ना, और जो सेटर लोग हैं वो होटल में लिख बैठकर मेंस की कॉपियां लिखते हैं और सिलेक्ट होते हैं। मैम
6: हम लोगों को सिर्फ यही है कि TDPL जितना भी एग्जाम लिया है सारा एग्जाम इनको कैंसिल करना होगा,
0: सारा एग्जाम
6: चाहे FRO हो चाहे SCA।
0: पर वो तो अपॉइंटमेंट हो गया है लोगों को,
6: FRO में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है,
0: जिन पर और में तो हो गया है,
6: जो हो गया उसमें नहीं कर रहे, लेकिन जैसे CGL का सबसे ज्यादा भावना CGL से मैडम जुड़ा हुआ है। CGL में वाकई
0: कितना साल आपने एग्जाम दिया है?
6: मैम हम तो लगता है कि 15 के बाद ये CGL दिए थे, 22, 23, 24 में, इससे पहले भी इन्हीं के सरकार में CGL का पेपर हुआ था, हमको लगता है 23 या 28 में, उस समय भी पेपर जो है सो आउट हो गया था, तो उस समय रद्द किए, आनंद फानंद में छात्र के दबाव में फिर एग्जाम लिए और फिर पेपर आउट हुआ।
0: कहाँ से हैं?
8: मैं चित्रा से, चित्रा।
0: यहाँ पर आए हैं इतना दूर से, क्यों आए हैं, कितने साल के हैं?
8: मैं 19 साल का हूँ।
0: 19 साल के?
8: क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है मैम, क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है। मैं 2022 में रांची में आया था अपना 10th का तैयारी करने, ठीक है, उस टाइम मेरे भैया लोग पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में, मैं ग्रेजुएशन फाइनल करने वाला हूँ, लास्ट ईयर में हूँ, अभी तक भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके साथ अब तैयारी करने लगा हूँ। यहाँ पे फ्यूचर ऐसा डार्क हमारा बना दिया गया है कि दिखने पर भी नहीं दिखता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो अभय तिवारी के बारे में बात किया जा रहा है, मनोज कुमार तिवारी, उसने 2013 में SSR इन इंडियन नेवी का एग्जाम निकाला, धांधली कैसे कैसे हुआ बताता हूँ। 2014 में असिस्टेंट इन बार्क भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में निकाला, 14 में NSL में निकाला, 18 में CRPF हेड कांस्टेबल जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, 18 में सब इंस्पेक्टर झारखंड का बना, फिर उसके बाद 23 में JSSC सेकंड टॉपर रहा, उसने अपने भाई को और उसकी पत्नी को भी उसमें शामिल करवाया, उससे उसका भी रिजल्ट आया, उसके साथ साथ दो उसके और आदमी थे जो कि
0: चलिए वो आप ये पूरा डिटेल बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जब आप छोटे थे आप अपने भैया को देखते थे प्रिपेयर करते हुए, अब आप दोनों एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर के लिए कर रहे हैं, कितने साल हो गए?
8: मेरा 19 साल हुआ है उस टाइम हम आए थे सर।
0: भैया कितने साल के हैं?
8: भैया 28-30 हो गए होंगे।
0: तो आपके 30 साल
8: यहीं पे वही लोग करवा रहे हैं,
0: आपके भैया भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, भैया 30 साल के हैं, आप 18-19 साल के हैं, और आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
8: मैं उस टाइम वो JSSC का तैयारी करते थे, मैं 10th में था।
0: भैया कहाँ हैं आप?
8: है आगे हैं।
0: बुलाइए जरा उन्हें। You understood the kind of case or the kind of feeling that there is here. I just met a 19-year-old young student who's telling me he and his 30-year-old brother, both of them are here. Because when he was young, he saw his 30 older brother prepare for these exams and the papers kept leaking. And today, he at 19-year-old and his 30-year-old brother are both preparing for the same exam. This is what angst of the youth looks like. This is what heartbreak of the youth looks like. And this is what has brought people like him and his brother, and he's just calling his brother all the way.
8: And I, ma'am, I heard from the place that is 6 kilometers from Bihar, just 6 kilometers, minus 6 kilometers Bihar. My friend who had become, that become like they cracked exam, many examination of Bihar. Would you not believe that 32,000 seats have been come of Bihar, that is TG, 4.2 teacher.
0: Pooja, if you can hear.
8: I had studied from class from 2012 to 2022 in hostel class till 10 years. Then I came to Ranchi for my higher secondary education. That is, I studied in DAV Bariatu Ranchi. Then after that, I joined the college of Ranchi. I am in 6th or 7th when I will be graduating. Till now, nothing had been changed.
0: जब आप
8: 10th में थे,
0: आप 10th
8: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो भैया हैं ये JSSC का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी JSSC का तैयारी कर रहा हूँ, JPSC, ये भी वही चीज का करने लगे, इनका ये 30+ हो गया, बताइए।
0: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
9: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
0: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
9: की एग्जाम
0: कब से?
9: 8 साल से।
0: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
9: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब जगह ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, वीडियो सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का जनरल का वो रेट का भी कॉलम खोल दे, आप पोस्ट वाइज रेट बांट दे कि हाँ ये रेट रहेगा, जिसका जितना दम रहेगा क्षमता रहेगा वो रेट देगा, फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा।
10: जब हेमंत सोरेन 2019 में चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करते थे तो ये न्यूज था, 5,00,000 नौकरी सरकारी नौकरी की बात करते थे और 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है 1,00,000 भी सरकारी नौकरी नहीं मिला है और इनका ऑडियो उपलब्ध है, ऑडियो में बोलते हैं कि सरकारी नौकरी लेके क्या करोगे, सुअर पालो बकरी पालो, सरकारी नौकरी करेगा ट्रांसफर वहां हो जाएगा दिक्कत होगा, दुनिया भर का समस्या होता है हम नहीं समझते हैं, तो बोलते हैं कि सुअर पालो बकरी पालो और ये बोले थे 5,00,000 सरकारी नौकरी का 1,00,000 भी सरकारी नौकरी नहीं मिला पूरा छोड़ देंगे, तो भी
11: जो दे रहे हैं वो भी बोलिए कि जो दे रहे हैं वो भी बेचने का काम कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं।
10: दूसरे स्टेट में सुनते हैं कि पेपर लीक होता है, यहाँ पेपर लीक तो होता है लेकिन सीट बिकता है, सीधा सीट ही बेच दिया जाता है।
12: मैम ऐसा नहीं है कि जेपीएससी और जेएसएससी का सिर्फ यहाँ पे मामला है, छोट नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम ही खराब है। अगर जेक बोर्ड का एग्जाम लेता है जो 10th और 12th का होता है उसका पेपर हर साल आधा घंटा पहले टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, ये पूरा स्टेट को पता रहता है इनके सरकार को पता नहीं रहता। वो देखिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेसीईसी भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो भी एग्जाम टाइम पर नहीं होता है कभी भी। अभी देखिए हर कॉलेज में काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक वो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाई है, बताइए बच्चा एडमिशन कब लेगा? अगर उसे कॉलेज नहीं मिले तो प्राइवेट कॉलेज में झारखंड से बाहर भी जाना चाहेगा तब उसका टाइम खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा वो बताइए। नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम ही खराब हो गया।
13: अब सब छात्र से पूछिएगा कि कॉलेजेस का व्यवस्था एकदम घटिया है, क्योंकि मैं इसके अलावा आप नीति अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया, स्कूल का भी व्यवस्था वैसी है, 90,000 की स्कूल पूरा इंडिया में बंद कर दी गई है, बढ़ोतरी किसको मिली है? जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट कर दी थी कि ये बीजेपी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, ये भी तो प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, तो ये कब जनता जागेगी, कब स्टूडेंट जागेगा? इस वजह से मैंने प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक बात किया है।
3: To quote one of the protesters and the students here, वक्त जवाब दे रहा है और अब हिम्मत जवाब दे रही है। They've given the entire youth exam after exam, hoping to build a future. They're losing time and they're losing the courage and the strength to continue to fight for. For most of these students who have come here, it's now or never. The government needs to listen, otherwise they have no hope. And for the youth of this country to lose hope is abysmal, a sorry documentary on a democracy. क्या नाम है आपका?
14: मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं देवघर से आया हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ।
3: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतना दूर क्यों आए हैं सर?
14: मैम बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ है सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने आरटीआई के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो डीओपीटी में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहां से वैकेंसी जारी होती है। यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है। और जो प्रॉपर लेटर के माध्यम से हम सब देखिए, ये कार्मिक विभाग प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, यहां पे जाके भी वैकेंसी के लिए हमने अर्जी दी हुई थी, ये विभाग के अंदर टोटल सीट है। उसके बाद यहां पे पथ निर्माण विभाग में भी अर्जी दी हुई थी, ये भी देख लीजिए, सारा कोई ऑफिशियल लेटर, हमने पत्राचार का जितना भी माध्यम था सारा अपना लिया, उसके बाद हम फिजिकल प्रोटेस्ट में आए हुए हैं यहां पे कार्मिक।
3: ये पूरा काम करने के बाद, ये सारा चिट्ठी विट्ठी लिखने के बाद फिर प्रोटेस्ट से जुड़े हैं?
14: फिर प्रोटेस्ट से जुड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिल चुके थे, जब मुख्यमंत्री साहब शपथ ग्रहण किए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी वैकेंसी आएगी जेपीएससी सहायक अभियंता की, लेकिन हमें कोई यहाँ पे वैकेंसी देखने को नहीं मिला। हमने एक्स पर भी अभियान कर लिया था, ट्विटर अभियान, ताकि हमारी वैकेंसी आ सके, लेकिन वहां से भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला। उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब विधानसभा में सवाल उठाने के लिए दिया था, वहां पे भी लिखा हुआ था कि विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी, मतलब हमारा जो नियमावली है वो बना हुआ नहीं था, अब नियमावली बन चुकी है। नियमावली बनने के बाद भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। उसके बाद अभी जो कल से मॉनसून सत्र स्टार्ट है उसके लिए भी हमने अर्जी लगाई हुई है कि हमारी वैकेंसी आ जाए, लेकिन उसमें भी हमें सिर्फ और सिर्फ छलावा मिलेगा। तो अभी हम यहाँ इसलिए आए हैं, जैसे कहा जाता है ना झारखंड में कहावत है, कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, मतलब हम वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़ रहे हैं। वैकेंसी निकल जाए उसके बाद अच्छे से एग्जाम करवाने के लिए लड़ रहे हैं, एग्जाम हो जाए उसके बाद रिजल्ट के लिए लड़ेंगे, रिजल्ट हो जाने के बाद यदि पेपर लीक का मामला आता है तो यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे नसीब में सिर्फ लड़ना लिखा है, वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो इसलिए हम सब आए हैं कि झारखंड सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन सर से रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट डिपार्टमेंट है सहायक अभियंता की भर्ती के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग दोनों
3: मुख्यमंत्री इतना बड़ा बात कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं,
14: मतलब हम सब थक के हार चुके हैं, मतलब परेशान है, अब क्या करें। 2019 के बाद से हमें आश्वासन मिला है, इतनी कोशिश हमने कर ली है, पत्राचार के माध्यम से जितने भी तरीके होते हैं सब हमने अपना लिया, उसके बाद यहाँ पे हताश लाचार होकर के आए हुए हैं। क्या
3: कितने साल के हैं सर?
14: हम 29 साल के हैं और झारखंड में हर साल मतलब 10 से 12 हजार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास हो रहे हैं। 40 से 45 कॉलेज हैं, IIT धनबाद है, NIT जमशेदपुर है, BIT मेसरा है, BIT सिंदरी है, झारखंड गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से मैं पास आउट हूँ। लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हमें मौके ही नहीं दिए जा रहे। 2019 के बाद से हम इस काबिल भी नहीं है कि हम फॉर्म भर सके। तो हमारी मांग यह है कि सरकार तक जितनी भी मांग है वैकेंसी निकाली जाए और एक प्रॉपर कैलेंडर जारी किया जाए और उस कैलेंडर में सहायक अभियंता के बारे में भी मेंशन हो और वो जो डेट मेंशन होगा उसको प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए। और जब एग्जाम होता है तो ऐसा देखा जाता है कि पेपर लीक हो गया, OMR गायब हो गया, तो OMR में 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन होता है ABCD, एक पांचवा ऑप्शन भी रहना चाहिए ई का, उसमें लिखा होना चाहिए अनअटेम्प्टेड। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जो इन्विजिलेटर मौजूद होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो लड़का कोई क्वेश्चन को टिक नहीं करता है तो वो पांचवा ऑप्शन अनअटेम्प्टेड वाला टिक कर दे। इससे क्या होगा कि हमारा जो एग्जामिनेशन के थ्रू जो OMR सीट जाएगा वो खाली नहीं जाएगा, तो ऊपर से लांछन भी नहीं लगेगा।
3: इतने संघर्ष में घर कैसे चलता है, गृहस्थी कैसे चलता है?
14: घर गृहस्थी वो तो पिताजी अभी देख रहे हैं, पिताजी अभी किसान हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जो भी होता है खुद से भी थोड़ा कोशिश करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो मिला जुला के अभी किसी तरह से चल रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा मैम। समय जवाब दे रहा है और हिम्मत भी जवाब दे रहा है। अब अंतिम प्रयास है हमारा इस समय कि इस आंदोलन के जरिए जितनी भी मांगे जा रही है उसमें हमारा भी मांग सुन लिया जाए तो फिर बहुत अच्छा होगा।
3: गुड लक। मैं एक फोटो ले लूँ आपके टी शर्ट का? You like Taylor Swift? Huh? Yeah. You're a Taylor Swift fan?
15: Yes, yes.
3: And why have you worn the t-shirt here, anti-hero protest?
15: Actually, the things that topics that has been arise here, it's like we have been trying like for so many years. I have my elder sister who is trying, and like many times like they have given exams and all, in last moment like all the exams have been cancelled, even for the teaching job. Recently the result that came, like total number of vacancies were certain numbers, but the appointment letter were given in like you can say like in installment. So it's like it's not clear, like many students their results are yet to be declared because there was a issue, like there was certain issue in the examination center because of which their papers were cancelled and their exams were to be conducted once again, but those exams are yet to be conducted, but the result has already been declared. So those,
3: how many years have you wasted giving these exams?
15: For me it's just 3 years.
3: Just 3 years.
15: My sister, she has been trying like since 2018.
3: 2018. 3 years for you,
15: yeah.
3: And nearly what, 8 years for her, and she's just giving one exam after the other,
15: yeah.
3: And people are getting leave. How disappointed is she?
15: Too disappointed, because we have to consider even the age, like it's running away. So yeah, like it's disappointing because our parents are also dependent. They are looking forward, like they want us to be settled because their time is also running away. So
3: is there pressure get married?
15: Yeah, there's pressure for everything, like to get settled.
3: Settled matlab?
15: Settled in both ways. Having like financial stability as well as settling down as a family.
3: And there's no job.
15: Sorry?
3: As a girl, is there more pressure?
15: Yeah. Because parents want to see us settled, but they also want us to be independent financially and then settle. But that is not happening here.
16: How is it at home? Your parents are supporting you and your sister?
15: They are supporting, but my parents both are above 60, so they have health issues, and also we have to see those things as well and then prepare. And again we are giving the exams and it's been cancelled or papers are being leaked, like in many forms. It's really, yeah.
16: I'm sorry to hear it.
2: A recruitment process now under the scanner. 103 vacancies, 2,204 candidates shortlisted for the mains, no category-wise cutoffs published, an unsigned merit list deepens the controversy. The viral OMR sheet allegedly shows a shortlisted candidate attempting just 48 questions. Students question how several candidates made the cut. The Jharkhand government ordered a CID-SIT probe, but protesters say the probe is only the beginning, not the solution.
14: जिस एग्जाम के वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ है वो मैं पास हूँ मैम, फिर भी मेरा माननीय उच्चतम न्यायालय से ये निवेदन है.
3: आप पास हैं?
14: यस मैम, मैं पास हूँ.
3: आप जेपीसीसी इस बार पास हैं?
14: यस मैम, मैं पास हूँ. फिर
3: भी तभी भी यहाँ पर है जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें आपने क्लियर किया?
14: यस मैम, मैं पास हूँ. फिर भी मैं यहाँ पे हूँ. मेरा माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि आप महामहिम भीष्म और गुरु द्रोण की तरह मुख दर्शक बनना छोड़ दीजिए. एक संवैधानिक संस्था का चीरहरण हो गया है और आपकी खामोशी हमें चुभ रही है. आप अफजल गुरु के लिए रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल सकते हैं और कुत्तों के लिए सुबह मोटो ले सकते हैं, तो क्या हमें कुत्ता बनना पड़ेगा? इसीलिए आपसे निवेदन है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी, जिसका एक साल से डेट पे डेट मिल रहा है.
3: आप 19 से बोल रहे हैं कि 19 से सारे एग्जाम खारिज किया जाए?
14: सारे एग्जाम,
3: ये तो मुश्किल है ना सर.
14: नहीं नहीं, उस एग्जाम का केस चल रहा है मैम. आप डेट ही नहीं दीजिएगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? एक साल से डेट ही नहीं मिल रहा है, आप डेट दीजिए, सुनवाई कीजिए 3 महीना. अगर हम गलत होंगे तो हटा दीजिएगा.
3: सरकार कह रही है थोड़ा हम चलेंगे, थोड़ा आप चलिए.
14: मैम, सरकार का जो चल रहा है तो चल ही रहा है. हम माननीय कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि आप तो हस्तक्षेप कीजिए. सुओ मोटो सिर्फ कुत्तों के लिए तो है नहीं, हमारे लिए भी रखिए. हम भी यहाँ के बच्चे हैं, भोगेंगे तो आप लगता है आप लीजिएगा. वही मेरा
3: एक चीज बताइए, यहाँ पर 2 प्रदर्शन अब चल रहे हैं. एक आपका प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे जिससे सरकार आई है आपसे बातचीत करने, एक वे निकालने के लिए कि आगे क्या हो सकता है कि आपका धरना प्रदर्शन बंद हो जाए. आप हमसे थोड़ी ही दूर देवेंद्रनाथ महातो वहाँ पर अनशन पे आज उन्होंने पानी का अनशन तोड़ा है. JKLF वहाँ पर अभी भी प्रदर्शन कर रही है. आपके प्रदर्शन में और उस प्रदर्शन में क्या अंतर है?
14: हम हमारे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में अंतर यही है कि हम आप पॉलिटिकल रहना चाहते थे. हमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं चाहिए. कोई नेता मंत्री आता है उनका नैतिक समर्थन हम लेंगे, लेकिन उन्हें मंच नहीं देंगे. मंच में सिर्फ वही छात्र रहेंगे जो पीड़ित है, सच में पीड़ित है, जो ऑलरेडी मेंस इंटरव्यू दिए हुए हैं, जिनके साथ सच में गलत हुआ है, वही है यहाँ पे मैम.
3: यहाँ पर बहुत सारे बच्चे वो भी है छात्र हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं यहाँ पर.
14: यस मैम.
3: कितने लोगों का कितने दिन तक अनशन चल रहा है?
14: 4 लोगों का अनशन है, अनिश्चितकालीन अनशन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी.
3: जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं है उनका अनशन चल रहा है.
14: हमारी मांगे स्पष्ट है. TDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम करा गए हैं पूर्व में और अभी जो वर्तमान में, आप सबको कैंसिल कीजिए. और अभय तिवारी जो झारखंड का आइंस्टाइन और न्यूटन, आर्यभट्ट जो ट्राइंगल है, वो जो इतना महान साइंटिस्ट है, वो जिस जिस एग्जाम में बैठा है सब एग्जाम कैंसिल होना चाहिए.
2: दे आर डिमांडिंग CBI and ED probe into alleged recruitment scams, cancellation of tainted exams and results, fresh and transparent recruitment, a fixed recruitment calendar, action against those behind paper leaks, a leak-proof, transparent JPSC, JSSC recruitment system.
16: What you see right behind me is the stage that has been set up by independent job aspirants that wanted a different stage to put forth their demand, their grievances against the Hemant Soren government. So what started as one protest against the government of Jharkhand has now split into two. One right behind me, this is the set with which the Hemant Soren government has opened channels of talks with. They've given them time for today to come up with a 5-member committee so that talks can begin with the government. So that is one stage.
0: I'll ask my camera person, Pawan, to actually now show you. This is the second stage. Now, the independent job aspirants who did not want any political affiliation to their protest broke their protest, formed an independent stage. Earlier on, both the stages were two. Now, this is the other camp. This is where Devendranath Mato, who was on a hunger strike, who spoke to Sonam Wangchuk this morning and broke his, at least, water fast for now. He is continues to be here. This is a protest that has been spearheaded by the JKLM. Shukriya, sir, aapka chhata. Has been spearheaded by JKLM, the local party here. This stage sees a fair amount of political representation. It also is drawing crowds. It's not that it's not drawing crowds. Of course, large numbers gathered there, lesser here, but even this stage of protest is seeing quite a bit of crowd. The demands for both seemingly same, while here sometimes you will also hear echo the demand for the resignation of Hemant Soren, who is also the education minister. मातु जी अभी आपकी तबीयत कैसी है सर?
17: तबीयत बहुत अत्यधिक कमजोरी है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, पैर में बहुत ज़्यादा तनाव है और ज़्यादा बात कर रहे हैं तो मेरा चेस्ट में दर्द कर रहा है।
0: हम आपसे ज़्यादा नहीं बुलवाएंगे मातु जी, आपने आज सोनम वांगचुक की बात सुनकर अपना एटलीस्ट जो पानी का है वो फास्ट तोड़ा है, आप जल्दी ही अपना अनशन भी तोड़िए क्योंकि हेल्थ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पर आप कब तक इस अनशन पे बैठेंगे?
17: मैं ये हंगर स्ट्राइक को तब तक कंटिन्यू रखूँगा जब तक हमारे सारे मांग सरकार नहीं मानती है। मैं झारखंड का एक एक स्टूडेंट को संतुष्ट करूंगा, सभी को संतुष्ट होंगे मांगों पर, तभी मैं इस अनशन को तोड़ूंगा, चाहे क्यों न ये सफेद चादर कफन में बदल जाए, हमें मंजूर है। लेकिन 26 सालों से बहुत परेशान है झारखंड के छात्र, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
0: मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी क्योंकि मैं आपको नहीं ज़्यादा बुलवाना चाहती। अब सरकार ने बोला है कि वो बातचीत करेगी, छात्रों को बोला है कि आप 5 मेंबर का एक गुट बनाइए, हमसे बातचीत शुरू करिए, क्या आप उससे खुश हैं? वो जो 5 मेंबर जो भी वो चुने उससे खुश नहीं है?
17: इस तरह का कमेटी का गठन होना, जाँच होना, कार्रवाई होना, ये 26 सालों से चलती आ रही है। हमने अपना मांग पत्र सरकार को भेज दिया है, वो सारे मांग कबूल करेंगे, वो सारे मांग पूरी करेंगे, तभी मैं मानूंगा।
0: तभी आप मानेंगे। आपका मंच और वो मंच एक है?
17: जी, दोनों मंच एक है। ये जो आज इतना बड़ा आंदोलन देख रहे हैं झारखंड के स्टूडेंट्स का, ये शुरुआत 2 जुलाई 14th JPSC सिविल सेवा पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के साथ हुई और इसका लड़ाई मैं 5 जुलाई से कर रहा हूँ। 25 जुलाई से दिवारात्रि सत्याग्रह किया हूँ, जब मैं थक चुका था, सरकार नहीं मान रही थी, थका हुआ अवस्था में 2 अगस्त को अपना अन्न और जल का त्याग किया था।
0: सरकार से किसी ने आपसे बात अभी शुरू की है, आपसे बात की है? क्योंकि सोनम वांगचुक का फोन आया आपको, हेमंत सोरेन सरकार से किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है?
17: जी, मांग पत्र क्या है सब मानेंगे आप, भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, इस तरह का हमें मनाने का प्रयास कल से किया जा रहा है, लेकिन मैं तब तक हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखूंगा जब तक मेरा सभी मांग पूरी नहीं की जाएगी। हमको अगर भूख हड़ताल ब्रेक कराना है तो सरकार हमारी मांग को पूरा करते हुए दिखा दे हमको।
0: तभी जो आपकी 3 मांगे हैं?
17: 3 मांगने कुल, देखिए पूरा सिस्टम सुधार का मांग है। सिस्टम सुधार की बात करेंगे तो कई चरणों पे बात होगी, कुछ परीक्षाएं गड़बड़ी हैं, विवादित हैं, उसको रद्द की बात होगी, उसके बाद जांच होगी तो कुछ लोगों का नाम आएगा, उन लोग पर ईडी कार्रवाई की बात होगी, अगर जांच के बाद जो है कि उस पर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात होगी, क्योंकि 11 भर्ती परीक्षाओं पर JPSC पर CBI जांच हुई है लेकिन कोर्ट में ट्रायल नहीं है, जिसके वजह से झारखंड के मैक्सिमम

0: Soren government. So what started as one protest against the government of Jharkhand has now split into two. One right behind me, this is the set with which the Hemant Soren government has opened channels of talks with. They've given them time for today to come up with a five-member committee so that talks can begin with the government. So that is one stage. I'll ask my camera person, Pawan, to actually now show you. This is the second stage. Now, the independent job aspirants who did not want any political affiliation to their protest broke their protest, formed an independent stage. Earlier on, both the stages were two. Now, this is the other camp. This is where Devendranath Mato, who was on a hunger strike, who spoke to Sonam Wangchuk this morning and broke his, at least, water fast for now. He continues to be here. This is a protest that has been spearheaded by the JKLM.
1: The agitation is also drawing national attention. The CJP, which led the NEET paper leak protest, has now extended support.
2: Definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसके उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है.
1: With the assembly's monsoon session beginning tomorrow, the BJP sources tell India Today the student issue will dominate proceedings with an aggressive offensive planned inside the house. The party, however, will stay away from the August 10 assembly gherao. The students' demands haven't changed. The politics around them has. Should support for students' protests remain the same, regardless of who is in the power? Or do political alliances decide which protests deserve solidarity and which are met with silence? With Preeti Chaudhary in Ranchi, Bureau Report, India Today.
0: All right, Vyas, to get you up to speed, the Hemant Soren government has opened channels with the students here, a five-member delegation already coming in to speak to the government, but they're adamant on their demands. I am joined right now by Mahua Maji, Rajya Sabha MP from the JMM, and she's joining us live. Ms. Maji, thank you for taking the time out. My first question echoes from where I am standing, which is the Jaipal Singh Munda Stadium. And that is very clear. You might agree to all their demands, but they will not end this protest until and unless you order a CBI inquiry. Why is the government deterring from ordering a CBI inquiry? It is not one exam. You yourself know it from 2019. One examination after the other, one irregularity after the other, one corruption case where exams and slots being sold after the other, man.
3: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए डे वन से हमारी सरकार बहुत गंभीर है और लगातार एक दिन के अंदर ही आपने देखा कि किस तरह से एक्शन लिया गया. जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको रेजिग्नेशन लिया गया. सीआईडी ने तुरंत सब जगह छापेमारी शुरू की. इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई. सरकार बहुत गंभीर है, छात्रों के साथ है, उनके सेंटिमेंट को समझ रही है और वो चाहती है कि उनके साथ न्याय हो, इसलिए लगातार प्रयास हो रहा है. और जहां तक आप कह रहे सीबीआई, उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि पहले जैसे लोअर कोर्ट में जब कोई केस आता है तो लोअर कोर्ट करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं. तो यहाँ ऐसा है कि वो लोग ऑलरेडी बहुत त्वरित गति से काम कर रहे हैं सीआईडी. उसके बाद अगर उनके रिजल्ट जो भी आएंगे उनकी जांच के बाद, उसके बाद देखा जाएगा, फैसला लिया जाएगा, जो भी उचित होगा छात्रों के हित में हमारी सरकार अवश्य करेगी. और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है कि उनका द्वार खुला हुआ है, छात्र उनसे बात करे, सुझाव दे, वो जो चाहेंगे वही होगा. सरकार को कहीं भी किसी भी तरह से छात्रों को परेशान करने की नियत नहीं है, वो उनके साथ है और पूरी हमदर्दी उनके साथ है.
0: महुआ जी, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ अभी यही की बात बताती हूँ कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो साफ बोल रहे हैं. एक दो लाइन में समझा देती हूँ आपको कि वक्त कम है, धैर्य उससे भी ज्यादा कम है. जो आप कह रही हैं कि वक्त दीजिए, छात्रों के पास वक्त नहीं है, बहुत वक्त दिया है उन्होंने आपको और हर साल साल पर साल उनको फेल किया जा रहा है, उनकी आकांक्षाओं को फेल किया जा रहा है. फिर से पूछूंगी, सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं?
3: ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो इसके लिए तैयार भी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल सीआईडी जिस तरह से काम कर रही है तो थोड़ा ये भी देखना जरूरी है कि उनका क्या नतीजा आता है। छात्र अगर उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। तो सरकार कब कह रही है कि हम उनके साथ नहीं है? सरकार तो कह रही है कि आप आइए, हमें सुझाव दीजिए, आप जो कहेंगे।
0: माझी जी, 12 दिन हो गए हैं, आपको भी पता है छात्र संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जो बहुत दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं, अनशन पर हैं। तो ये बात तय है, छात्र संतुष्ट नहीं है। आपने आज उनसे बातचीत शुरू की है, बहुत क्लियर है कि एक एग्जामिनेशन की बात नहीं है, 19 से एग्जाम पर एग्जाम यही होता जा रहा है। तो क्यों नहीं, फिर से आपसे तीसरी बार वही सवाल पूछूंगी, सीबीआई की डिमांड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार?
4: देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले ये कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी उनसे वार्ता करेगी, वार्ता के बाद छात्र जो चाहेंगे कमेटी उस पर निर्णय ले लेगी तुरंत। इन्होंने मना कब किया है? वो तो छात्रों के साथ है, लगातार छात्र हित में काम भी कर रहे हैं और छात्रों का सुनहरा भविष्य चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छात्रों को निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ है और उनके साथ न्याय करके ही रहेंगे। सिर्फ कुछ पॉलिटिकल लोग उसमें इस छात्रों को भड़का रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, जो कि लेकिन जो छात्र हैं वो सरकार के साथ है। छात्र जानते हैं कि हमारी सरकार उनके भविष्य के लिए सोच रही है, कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम आपके साथ हैं, मेरा द्वार खुला हुआ है, आप जब चाहे हमारे पास आइए, सुझाव दीजिए और जो भी निर्णय उचित होगा हम आपके हित में लेंगे।
0: वो कहते हैं ना, एक डिस्कनेक्ट होता है कभी कभार जो लीडर्स होते हैं और जो लोग होते हैं। जो आप कह रही हैं छात्र आपके साथ है, नहीं, छात्र आपके साथ नहीं है महुआ माझी जी, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, वो आपसे एक्शन मांग रहे हैं, जो आप नहीं, आपकी सरकार अभी तक उनकी डिमांड्स पे नहीं खरी उतरी है। बस थैंक यू दो फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड ज्वाइनिंग अस मिस महुआ माझी, अप्रिशिएटेड। विद दैट व्यूअर्स, इट्स अ रैप दैट वी कंटिन्यू टू रिपोर्ट आउट ऑफ रांची झारखंड। माई कैमरा पर्सन पवन कुमार एंड आई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।

0: को प्रेजेंटेड बाय सीपी प्लस, ऊपर वाला सब देख रहा है।
1: Good evening, hello and welcome. You're with the news today, your prime time destination news.

अलग अलग सूचना माध्यमों से देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है।

0: वेयर।
1: देखिए मैं हर मुसाफिर किसी वजह से मिलता है, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए।
2: Some stories don't end when the credits roll. They quietly move into your heart.
3: वो वाली एनर्जी है।
4: वो एनर्जी मतलब?
3: जैसे कोई वर्जिन लड़का पहली बार किसी लड़की को घर लाया।
2: That's exactly what Musafir Cafe has done.
4: Lawyer है यहाँ?
3: जी।
5: Objection, Milord?
3: Milord नहीं होता।
5: Sustained.
2: It is in breaking the internet with shocking twists or larger than life moments.
3: मंडे को कम जीते हो क्या?
6: थोड़ा पास आइए ना मैडम।
3: तुम जैसे लोग थोड़ी देर से मिलते हैं।
4: और तुम जैसे ज्यादा देर रुकते नहीं।
2: Instead, it's making people pause, revisit old memories.
7: का अजीब ही तरीका होता है, वो फिर से लौट आती है किसी नए रूप में, किसी नई मुस्कुराहट के साथ।
2: Text the one person they could not forget and wonder what if.
8: दो लोगों को अलग अलग लाइफ स्टेजेस में प्यार नहीं कर सकते।
2: In an age of endless scrolling and instant gratification, this tender, slow-burn romance has now become social media's newest emotional obsession.

0: monsoon, Nagpur's chitar Oli becomes alive with the sound of chisels and the promise of Bappa's arrival. But the festive season, the biggest talking points now, the rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% मूर्ति जो रेट बढ़े हैं, लेकिन हम मट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate with fresh themes and customized Ganpati idols drawing buyers.
2: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गए। थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
3: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रिफर करते हैं।
4: पिछले 10-12 सालों से यहीं से मूर्ति लेता हूं, बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है। और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ। With Yogesh Pandey, Bureau Report, India Today.

0: monsoon, Nagpur's chitar Oli becomes alive with the sound of chisels and the promise of Bappa's arrival. But the festive season, the biggest talking points now, the rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% मूर्ति जो रेट बढ़े हैं, लेकिन हम मट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate with fresh themes and customized Ganpati idols drawing buyers.
2: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गए, थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
3: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं।
4: पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है, और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ. With Yogesh Pandey, Bureau Report, India Today.

0: rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% होती जो रेट बढ़े हैं, लेकिन हम मिट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate with fresh themes and customized Ganpati idols drawing buyers.
2: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गए। थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
3: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं।
4: पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है, और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ। With Yogesh Pandey, Bureau Report, India Today.